आओ सहने जमंगे रक्स करे, आओ सहने जमंगे रक्स करे, साज लेकर का डरे की है, देख कर उनकी अकलियों को।